0: पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ, बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। छात्र नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगी उस सुनने में?
1: ये कामयाबी है हक की झूठ के ऊपर, ये कामयाबी है उन तमाम नौजवानों की जद्दोजहद और उनकी कुर्बानी, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। और आज का जो तब्दीली पैदा हुई है वो इस बात की तरफ इशारा देता है कि मोदी सरकार अगर ये समझ रही है कि वो जो चाहे कर सकती है, चाहे बुलडोजर से घर तोड़ सकती है या फिर किसी को दबा सकती है, तो इस आंदोलन ने इस बात का उनको खुला पैगाम दे दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: to make Prahlad Joshi the education minister. And earlier they were demanding the resignation of Dharmendra Pradhan, saying that only when he resigns can there be a discussion. Now that he has resigned, he has been replaced by Prahlad Joshi. Now the Congress party is even attacking the new education minister, saying that he's the same as Dharmendra Pradhan. There's no difference. My colleague Himanshu Mishra is with us with more details on this. Himanshu, Congress party abhi bhi satisfied nahi dikh rahi hai. Pehle unki maang thi ki Dharmendra Pradhan ko hataya jaye. Ab jab Dharmendra Pradhan ko hata diya hai, to abhi bhi wo log keh rahe hain ki Prahlad Joshi aur Dharmendra Pradhan mein koi fark nahi hai.
1: देखिए, ये तो अपोजिशन का काम है कि जब जब सरकार कोई काम करे, अपोजिशन उसको जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करे. उनका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान और जो प्रहलाद जोशी हैं, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी है कि पैलेट गन्स का यूज हुआ है, गृह मंत्री जवाब दे, माफी मांगे. तो विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा हो चुका है. उसके बाद जो मांगे थी छात्रों की वो भी मान ली गई है और प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो गया है. लेकिन विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है. इसीलिए राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह को जो है चिट्ठी लिखी है पैलेट गन के यूज को लेकर. उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि माफी मांगनी चाहिए. और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान में कोई अंतर नहीं है. क्योंकि ये कैसे आप कह सकते हैं, इस्तीफे की मांग थी, इस्तीफे के बाद कोई ना कोई तो मंत्री बनेगा. अगर आपकी मांग मान ली गई है तो अंतर नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हैं. ये कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना. और उसके साथ साथ जो है वो ये भी चाहता है कि संसद के अंदर जो है वो संसद की कार्रवाई ना चले. अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से जो है वो संसद की कार्रवाई को आज चलाना चाहेगी, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं. एक जो है प्राइवेट एग्जाम प्रिवेंशन एंड अनफेयर 2024 अमेंडमेंट बिल, और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने के लिए. तो दोनों बिल्स को किस तरीके से सरकार पास कराएगी, ये एक बड़ा सवाल है. क्योंकि विपक्ष जो है अभी तक नीट एग्जाम पेपर लीक मामले पर इस बात पर अड़ा हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब हो चुका है, प्रोसेस खत्म हो चुका है. तो कहीं ना कहीं सरकार की राह आसान हुई है. लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे ये लगता है कि सदन में आज भी हंगामा जो है वो होगा.
0: जी हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. इन फैक्ट माय कॉलीग मारिया शकील इज नाउ आल्सो विद अस. मारिया, हाउ इज द ऑपोजिशन लाइकली टू रिस्पॉन्ड? विल इट बैक द लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट टुडे और कंटिन्यू टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द पेपर लीक क्राइसिस एंड डिमांड वाइडर अकाउंटेबिलिटी डिस्पाइट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान?
2: I see the opposition now coming on board to pass this bill because last week the government kept insisting that they are ready for discussion on paper leak. But the opposition was clear. It was a united opposition which said that the accountability begins with only the resignation of Dharmendra Pradhan and then any discussion can happen. Now that the resignation has happened, now it is about the processes which have to be fixed. The examination system has disappointed the youth of the nation. That is the truth. The larger challenge certainly has been that why is education part of the concurrent list, not either the central list or the state list? That's where the opposition is likely to question the government. Then the government on its part, remember, has been saying that paper leak has happened very recently in Congress ruled states. What are they doing? That is what we'll be seeing play out. I think now the government and the opposition will be coming on board to discuss the education reforms.
0: Absolutely, Maria. Do stay with us. Let's understand in detail what is going to be the government strategy, what is going to be the opposition strategy in the parliament today. So let's talk about the government first. So they will be pushing reset with the new education minister. So the government is presenting the new education minister, Prahlad Joshi, as the face of a fresh start for the exam system. to pass anti-paper leak amendment bill. So that remains the key focus. It aims to enact tougher laws to deter paper leaks and also exam fraud. To push exam reforms, legislation as the answer. So the government is positioning new reform laws as its response to concerns over the exam integrity. To also highlight Pradhan's resignation as accountability. So the resignation of the former education minister, Dharmendra Pradhan, is being projected, will be in fact projected by the government as a

0: little everyday frustrations adding up? Elite checking from NASA Federal can help. Get your paycheck up to 2 days early. Enjoy cell phone protection, roadside assistance, and identity theft aid for peace of mind. Even earn dividends on your balance. If your checking account isn't working hard for you, switch to Elite Checking from NASA Federal at nasafcu.com/elite. NASA Federal Credit Union. Smart. NASA smart. Federally insured by NCUA.
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
2: धर्मेंद्र बहन जी ने इस प्रकार का काम किया तो मैं उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने मौके को भांप करके और इन सारे बातों को ठीक रखने के लिए ये सब किया है।
3: रिजिग्नेशन करना उनका व्यक्तिगत सिद्धांत है, लेकिन मैंने ट्वीट भी किया हूं। आसाम के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमें काफी मदद किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अभी आसाम में हमने किया, प्रधान जी ने ही करके दिए रहे। और NEP इम्प्लीमेंटेशन में उनका जो एक बड़ा भूमिके थे, तो उसके लिए मेरा यही मानना है कि इतिहास धर्मेंद्र प्रधान जी को जरूर पॉजिटिवली ही असेस करेगा।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Very good morning to all our viewers. You're watching The Burning Question on India Today with me, Anjali Pandey. And right now we're getting some big breaking news. Now the RAF is reviewing the firing of pellet guns at the protesters. And as per reports, RAF fired pellet guns at Connaught Place area. That's the update that is coming in. As per sources, CRPF is reviewing the RAF action during the July 20 Parliament March. And a detailed report is still awaited. But sources tell us that information has emerged that an RAF personnel, in fact, fired pellet rounds during the July 20th Parliament March in the Connaught Place area. India Today confirmed pellet gun injuries, and according to sources now, some protesters were injured after falling to the ground during the incident. CRPF sources said that a detailed report on the entire episode is currently being prepared, but what we are learning is that an RAF personnel, in fact, did fire pellet gun at the protesters. The official CRPF and RAF inquiry report will be released after a comprehensive review. According to CRPF sources, more than 47 RAF personnel deployed in the Connaught Place area were injured during the violence, with some sustaining serious injuries. And during the protest, Delhi police and the RAF used tear gas, lathi charge and other crowd control measures. My colleague Jitendra Bahadur is now joining us with more details on this. Jitendra, bahut badi khabar samne aa rahi hai. Sources bata rahe hain ki jo ye review underway hai, CRPF jo review kar rahi hai RAF ke action ka, usme ye pata chala hai ki ek RAF personnel ne pellet gun use kiya tha, aur ye protesters aur opposition bhi yahi dawa karte aa rahe hain.
1: देखिए, इस तरीके के सवाल लगातार जो उठ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स और इसके अलावा सीआरपीएफ की तरफ से एक रिव्यू इस पूरे मामले को लेकर के समीक्षा की जा रही है, जिसकी इनिशियल रिपोर्ट जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पैलेट गन का 20 जुलाई को इस्तेमाल हुआ था. अब किस तरीके से हुआ था और कैसे हुआ था, इन तमाम चीज़ों को लेकर के छानबीन लगातार की जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर हो रहा था और कनॉट प्लेस के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से घिर चुके थे, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जो करीब 2 से 3 कंपनियां उस जगह पर मौजूद थी, जिसमें 47 के आसपास जो जवान हैं वो भी काफी घायल हैं और इसके साथ साथ कुछ जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं. ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उस दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल जरूर हुआ, लेकिन इस बात को लेकर के एक विस्तृत समीक्षा जो है वो सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा किया जा रहा है. जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार इस तरीके की समीक्षा की जा रही है, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर किन परिस्थितियों के दौरान इस तरीके की जो है एक्शन लिया गया. हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से किसी भी तरीके का बयान अभी नहीं आया है, ना तो सीआरपीएफ का और ना ही रैपिड एक्शन फोर्स का, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस तरीके के एक्शन वहां पर हुए जब पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस घिर चुकी थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे सुरक्षा बल के ऊपर, खासतौर पर रैपिड एक्शन फोर्स के ऊपर, जिसमें जो है इस तरीके का क्रिया के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई है उस पर इस तरीके का एक्शन हुआ है. तो इस तरीके की जांच रिपोर्ट जो सामने आ रही है सूत्रों के मुताबिक, अब इसको लेकर के एक विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें जानकारी सामने आएगी. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई इस तरीके का प्रदर्शन होता है या फिर कोई ऑपरेशन होता है, उस दौरान ऐसे ही रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें एसओपी का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, इन तमाम चीजों को देखा जाता है.
0: जी जितेंद्र, हमारे साथ बने रहिए. सो दैट्स द बिग ब्रेकिंग न्यूज दैट वी आर गेटिंग. एज पर सोर्सेज, द रिव्यू इज स्टिल अंडर वे, द रिव्यू बाय द सीआरपीएफ ओवर द एक्शन दैट वाज टेकन बाय द रैपिड एक्शन फोर्स ऑन जुलाई 20th ड्यूरिंग द मार्च. बट एज पर सोर्सेज वी आर लर्निंग दैट पेलेट गन वॉज इन फैक्ट यूज बाय एंड रैपिड एक्शन फोर्स पर्सनल, बट द रिपोर्ट इज स्टिल अवेटेड, द ऑफिशियल रिपोर्ट इज स्टिल अवेटेड. लेट्स ऑल्सो टेक अ लुक एट वन ऑफ द पेलेट गन विक्टिम्स टेस्टिमनी. So he said that I was moving around the protest site. The police were firing tear gas shells. Initially, the cops fired in the air and later they fired towards the crowd. Saw a cop aim gun at me and I was hit on my back and right elbow. If I hadn't run, it could have hit my face as well. That's the claim which is being made by one of the alleged victims. It felt like hot metal piercing my flesh. My back felt like it was on fire. Blood was dripping from the wound and I never expected I'd be shot. thought pellet guns were used only in Kashmir. So that's the testimony of one of the alleged victims. In fact, there have been several alleged victims of the pellet guns. Remember, this has been the claim from a lot of protesters. And in fact, the opposition has also been mounting attack on the government over the use of pellet guns and excessive force. In fact, in a Mega India Today exclusive, we unearthed a major development in this case. Medical records from the Safdarjung Hospital have confirmed pellet injuries among protesters following the crackdown during the July 20 demonstration near Jantar Mantar in Delhi. A demonstrator treated at the hospital suffered wounds to his back and elbow after security personnel fired tear gas and opened fire on the crowd. Listen in to one of the victims' kin.
2: होना है ना किसी का हमारे पास के साले वो घायल हो चुका है मैम ऐसी ऐसी बात है तो आप आ जाओ तो देख के सारे में यहाँ ब्लड लग रही है यहाँ लग रही है अंदर
3: कटा हुआ था शरीर क्या
2: शरीर शरीर शरीर पे नहीं यहाँ पे पूरे मुंह पे आंखों के अंदर पूरी पूरे देख के घबरा गए हम तो भाई क्या है क्या नहीं है ये चीज फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज जब उन्होंने कहा कि आंख में जा रहा है आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा.
0: In fact, earlier Rahul Gandhi also spoke on the use of pellet guns on students during the protest. Listen in.
4: There are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country.
0: So this is a very significant breaking news that we're getting. The CRPF is reviewing the action that was taken by the Rapid Action Force on July 20th on the protesters. And now this information is emerging as per sources that the RAF did use pellet guns. Remember, this has been the claim made by a lot of victims, alleged victims, and also the opposition that has been mounting attack on the government and is also all set to raise this issue in the parliament today. Well, let me now go across to Sakshi Batra of Business Today TV with all the updates of the markets in this business show. Sakshi, over to you.
5: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
6: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
7: Presented by National Stock Exchange.

0: So sorry.
1: अरे उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको। वो ऑटो पायलट अरे बाबा, उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
1: देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा।
3: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा। इंजन बंद कर दे इसका, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है यार बाबा।
3: लेकिन सर ये हॉर्मोस खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
3: और तीसरे पाइप से?
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
2: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा ना बाबा, क्या मस्त जोक मारा।
3: अरे कौन अरे?
2: हेलो, क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों। एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।

Salute! Salute! दोस्तों सीटे नहीं होते बोल रहे थे और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला फीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर

0: आप पटल पर रखने जाने वाले पत्र प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। आइटम नंबर टू, श्री सुरेश गोपी जी। सुरेश गोपी जी,
1: रेस्पेक्टेड सर, विथ योर परमिशन आई राइज टू मेक द स्टेटमेंट इन द हाउस लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 12 इन टुडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ the recommendations, observations of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas for various reports on demands for grants pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. These are A, 1st, 2nd, 5th, 10th and 18th reports of the 17th Lok Sabha, and B, 1st, 2nd and 7th reports of 18th Lok Sabha. These may please be considered as read. Thank you.
0: Item number 3, Sri Jayant Chaudhary.
2: Respected sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table of the house mentioned against my name as serial number 3. Today's list of business.
0: Pankaj Chaudhary ji.
3: सभापति महोदय, मैं आज की कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागज आपकी अनुमति से सभा के पटल पर रखता हूँ।
0: आइटम नंबर 5, सुश्री सुभा करण बल जी।
4: वेटेड फॉर लॉन्ग सर, देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस टू प्रेसिडेंस सर। When situations arise, so many students have committed suicide, the government can do anything, but cannot give back the life of those. So, sir,
5: now,
4: last week, No business was done.
5: John Peters, what is your point?
6: Sir, Parliament is...
7: का कोशिश करें। एक आंदोलन चला था और तब भी हम पार्लियामेंट में आकर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया, तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटिमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेड बेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए।
8: अब जो है विपक्ष की मांग और बढ़ गई है, अब अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग बढ़ गई।
7: यहाँ से विषय भटकने का कोशिश ना करें, मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। इस वक्त मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता।
9: अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 टू अमेंड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। थैंक यू स्पीकर सर।
10: इस पर विरोध करना चाहते हैं, इस विषय पर बोलना चाहते हैं? सौगत राय जी, एन के प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टैगोर जी, विजय कुमार के काव्या, माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके प्रश्न हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के प्रश्नवा अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरा स्थापित करें।
9: आई स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल।
10: माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूँ कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें, ताकि मत विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं, आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए, और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
11: Just coming in right now, as Jitendra Singh tabled the Public Examination Amendment Bill in Lok Sabha, heavy sloganeering from the opposition. The opposition this time adamant to corner the government on what the opposition believed was excessive police action on the protesting students from Jantar Mantar. The government wanting to table the Public Examination Amendment Bill, and the bill has been tabled, but any discussion on that hasn't been able to happen because of the pandemonium that continues on the floor of the House. The Rajya Sabha is already adjourned, and now the Lok Sabha stands adjourned till 2 p.m. I want to quickly connect to my colleague Piyush, who's joining us with the latest. Piyush, Lok Sabha now also adjourned till 2 p.m. The opposition not letting up. They want an answer from the government on excessive use of force on protesting students first.
12: Well, that's right, Preeti, and because of the continuous ruckus in Parliament in both the houses, now stand adjourned. Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. Government has been requesting opposition to let the Parliament function, as government wanted to not only introduce the bill.
7: Student ka interest, desh mein jo examination hone ka jo prakriya aaj tak humne dekha hai, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है इस पे चर्चा होना, ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त, मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है

0: And let's start with more news coming in this afternoon. India Today has now confronted the former education mantri, Dharmendra Pradhan. India Today tells, or rather asks, Dharmendra Pradhan, you quit because the house isn't running. Pradhan folds his hands and walks away. That's an interaction that has happened in Parliament House. Remember, Pradhan was felicitated by NDA MPs in Parliament, posed a question to former Education Minister as to why the opposition is still letting the House to function even after he has resigned. Right, we will in fact put out that reaction at Dharmendra Pradhan with India Today. India Today confronted Dharmendra Pradhan, the former Education Mantri, who's had to in fact quit after all the pressure was built on him. Listen into what really happened there.
1: विपक्ष अभी भी हाउस नहीं चलने दे रहा है. मैंने इस्तीफे की आपकी मांग कर रहा था. कुछ कहना है उस पे सर कि हाउस में बिल आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे सर?
2: के बावजूद जो है हाउस रन अपोजिशन नहीं होने दे रहा है.
1: अब क्या सर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स है
2: वो छात्रों के हित में है सर, क्योंकि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं
1: सर. हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर. आपका इस्तीफा हो गया है तो किस तरीके से यहाँ धर्मेंद्र प्रधान आप देखिए कि पार्लियामेंट बकायदा आए अपने इस्तीफे के बाद. शनिवार को उनका इस्तीफा होता है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और जब वो आते हैं तो तमाम बीजेपी के सांसद उनके सॉलिडारिटी में उनके साथ यहाँ मकर द्वार पे खड़े हुए नजर आते हैं. और उसके बाद जब हम लोग ने उनसे पूछा कि आपके इस्तीफे के बावजूद भी हाउस नहीं चल रहा है तो नमस्कार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान हाउस से निकल जाते हैं. आपको बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो बर्बरता हुई छात्रों पर उस पर जवाब दे, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ और इसको लेकर लगातार संसद में गतिरोध जारी है.
0: So that was the confrontation that we had with Dharmendra Pradhan. That's a union, former union education mantri who's had to put down his papers. My colleague's questions to him were direct. She asked him, you've quit, but the house isn't functioning. So he's not responded. Pradhan has folded his hands and he walks away. This is the response, rather, of the former education minister. Dharmendra Pradhan was really been in the eye of the storm for days and weeks at a stretch, eventually leading to his resignation.
1: विपक्ष अभी भी हाउस नहीं चलने दे रहा है. मैंने इस्तीफे की आपकी मांग कर रहा था. कुछ कहना है उस पे सर कि हाउस में बिल आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे सर?
2: के बावजूद जो है हाउस रन अपोजिशन नहीं होने दे रहा है
1: सर. क्या सर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स
2: है वो छात्रों के हित में है सर, कि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं
1: सर? हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर. आपका इस्तीफा हो गया है तो किस तरीके से यहाँ धर्मेंद्र प्रधान आप देखिए कि पार्लियामेंट बकायदा आए अपने इस्तीफे के बाद. शनिवार को उनका इस्तीफा होता है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और जब वो आते हैं तो तमाम बीजेपी के सांसद उनके सॉलिडारिटी में उनके साथ यहाँ मकर द्वार पे खड़े हुए नजर आते हैं. और उसके बाद जब हम लोग ने उनसे पूछा कि आपके इस्तीफे के बावजूद भी हाउस नहीं चल रहा है तो नमस्कार करते हुए धर्मेंद्र प्रधान हाउस से निकल जाते हैं. आपको बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो बर्बरता हुई छात्रों पर उस पर जवाब दे, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ और इसको लेकर लगातार संसद में गतिरोध जारी है.
0: मॉर्निंग सोनम वांगचुक हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल. वांगचुक इज टू विजिट राजघाट आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. His tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat says will return to the mountains after Delhi. Wangchuk, remember, broke his fast after 26 days when ministers went to him, spoke with him. He broke his fast at the hands of JP Nadda, the Union Health Minister and former National President of the Bharatiya Janata Party. He thanks backers for good wishes. Listen into what he said.

0: ये आम आदमी पार्टी उनका इस्तीफा मांग रही थी और बीजेपी वाले इनका इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो कहाँ जाएं? और ये जो इतना बड़ा नेक्सस है, हरजोत बैंस को भी इस्तीफा देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो सब झूठ ही है, सरकार ही झूठ की सरकार है और झूठ ही चल रहा है यहाँ।
1: आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे, कल ही तो खत्म हुआ, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए।
2: बिल्कुल सर। और पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर?
1: उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी की पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं, आज वक्त है बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद, हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए।
5: किसी को बात करनी है तो बिल्कुल वो बात करे, लेकिन अगर बात करके आप ब्लैकमेल करना चाहें, धमकी देना चाहें, तो मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बात करिए। और देखिए, गठबंधन जो होते हैं ये राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उचित समय पर फैसला करेगा। तो जब उचित समय पर फैसला होगा तो जो लोग भी हमारे विचारधारा के साथ हैं, हमारी उनसे विचारधारा मेल खाती है, वो लोग अगर आते हैं तो मुझे लग रहा है कि जरूर बात होनी चाहिए। और जब बात होगी तो कोई रास्ता निकलेगा।
6: आपने पुलिस को क्या इशारा किया कि देशवासियों पे आप तोप भी उठा सकते हो, रबर पैलेट्स फायर कर सकते हो? कुछ तो शर्म कुछ तो रखे। और इतना खतरनाक आंदोलन करवाई ये पुलिस के साथ साथ कि कल का दिन आम नागरिक कोई वर्दी वाले का भरोसे पे नहीं रह सकते हैं। हमें पता ही नहीं कि असली पुलिस थे या नकली पुलिस वर्दी पहन के आ गई। क्या तरीका है इस डेमोक्रेसी में? ये लोग समझते हैं क्या ये सरकार कि उन्होंने क्या किया और क्या आदत करवा रहे हैं?

0: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju and Lok Sabha Speaker Om Birla are holding discussion with the leaders of all parties of opposition parties to resolve the deadlock in the House. Speaker Om Birla has met with K.C. Venugopal of the Congress, Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party in his office. The Speaker has basically asked both the government and the opposition to come to a conclusion. Decide. Remember, ever since the monsoon session has started, there's been a complete washout in the sense there's sloganeering, protest. There's not really been a discussion and debate on valid bills that need to be cleared. Speaker is saying government and opposition must talk and respond by 5 p.m. Speaker giving opposition time till 5 p.m. this evening to respond. So in the next 2 hours, we'll know precisely what is happening and what is expected. Himanshu Mishra joins me for the latest on that. Himanshu, kis tarah ki strategy hum maan ke chale opposition aur sarkar ki taraf se hogi? 5 baje ka samay jo bhi diya hai, uske baad kya expected hai? Kya aaj agar koi decision hota hai, aaj bhi kuch sadan chal sakta hai ya ye kal se hi shuruaat hogi?
1: देखिए, अगर सहमति बनेगी तो 5 बजे से जो है सदन की कार्रवाई जो है वो चल सकती है पूजा, लेकिन विपक्ष इसके लिए अभी तैयार नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के रूम में जो है सभी अपोजिशन लीडर्स को एक एक करके जो है वो बुलाया जा रहा है। वहां पे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू भी है, उनसे बात की जा रही है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, केसी वेणुगोपाल ने मुलाकात की है, अन्य विपक्षी दलों के सांसदों को बुलाकर सरकार ये बात कर रही है कि इस बिल को जो है वो पास करना जरूरी है, जिससे ये मैसेज आए कि देश के युवाओं के लिए जो है सभी राजनीतिक दल एक है और परीक्षा जो पेपर लीक मामला है इस पर जो है जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए संसद ने कड़े कानून जो है और बनाए हैं।
0: Alright, Himanshu, keep tracking all the latest. So Himanshu is going to tell us what precisely is the decision final taken by the government and the opposition and if the session can continue now. Dharmendra Pradhan may have quit as the education minister, but it appears that he is still all clear about what his role is going to be in the parliament and more. Dharmendra Pradhan seen telling Jairam Ramesh, I quote it here, I'm a street fighter, not an AC room activist. And when Dharmendra Pradhan arrived at the parliament, look at these visuals on his screen. This is after the resignation, so now he remains only a member of parliament. He did, however, receive a warm welcome greetings by the NDA MPs. Those who have been his colleagues, have worked alongside with him for years. There was a smile on Dharmendra Pradhan's face. So now when he returns to the parliament, he's still a member of parliament, of course, but no more the minister of an important ministry, for now at least. One member of parliament remarked that this was the first time a minister had resigned without facing specific allegations. And of course, what next will be now for Dharmendra Pradhan? And considering that he's one, remember, a powerful face for Odisha BJP, he's played a pivotal role in national politics. What happens then for Dharmendra Pradhan? I want to take that question to Himanshu Mishra. Himanshu, aap hume bataye, kyunki kafi senior neta rahe hain, experience hai situations sambhalne ka, election sambhalne ka. To Dharmendra Pradhan ko aage ka role kaise aap ke sutra bata rahe hain, kis tarah ka role reh sakta hai?
1: देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद जिस तरीके से वो संसद में आए और एनडीए के सांसदों ने उनका स्वागत किया और फिर जयराम रमेश ने उनको टोका कि अब क्या, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि मैं जो हूँ वो स्ट्रीट फाइटर हूँ और इसी रूम का एक्टिविस्ट नहीं हूँ। इससे पहले अगर हम देखें तो धर्मेंद्र प्रधान संगठन में बहुत लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं वो, और उसके साथ साथ जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है कई राज्यों में विधानसभा प्रभारी रह चुके हैं, कर्नाटक में रहे हैं, उसके साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, यहाँ इन राज्यों में उन्होंने जो है चुनावी प्रभारी के तौर पे काम किया और जब पार्टी के अंदर 2014 से पहले वो संगठन प्रभारी भी रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान के पास संगठन का बहुत लंबा अनुभव है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन में जो है,
0: ये भी हमें बताइए, जो विजुअल आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ रोकूंगी, जो जयराम रमेश से उनकी बातचीत के बारे में आपको पता चला है, एक कांग्रेस नेता रहे हैं सीनियर, एक बीजेपी की तरफ से है, तो किस तरह की बातचीत हुई, आपको क्या सुनने में मिल रहा है?
1: देखिए, बिल्कुल, जयराम रमेश ने उनको एक नोट कसते हुए कहा अब आगे क्या, उन्होंने साफ कर दिया कि मैं जो हूँ स्ट्रीट फाइटर हूँ, मैं एसी रूम का एक्टिविस्ट नहीं हूँ, यानी कि मैं आपको काम करता हुआ और पहले से ज्यादा दिखाई दूंगा, चाहे पार्टी और सरकार मुझे जहां जिम्मेदारी देगी मैं उसको निभाऊंगा। मैंने ये पहले भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो 2014 से पहले पार्टी के महासचिव थे, कई राज्यों के अंदर वो जो है संगठन प्रभारी रहे हैं। उसके बाद जब से 2014 के बाद सरकार बनी है उनके पास कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के प्रभारी तौर पर उनकी भूमिका देखने को मिली है, चाहे कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो, बिहार के विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के अंदर उन्होंने जो है वो प्रभारी रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी की जो सीट है 2021 में भी, और साथ ही साथ जो है वो 26 के अंदर भी उन्होंने नंदीग्राम सीट को संभाला है और उसमें संगठन प्रभारी के तौर पर काम करते हुए दोनों ही बार जो जीत है उसकी एक बड़ी रूपरेखा तैयार करने का काम जो है धर्मेंद्र प्रधान ने किया है वहां पे प्रभारी रहते हुए। और बिहार के अंदर जिस तरीके की विक्ट्री मिली इस बार 2/3 से ज्यादा 2010 से बड़ी विक्ट्री जो मिली थी उसको गढ़ने का काम जो है वो धर्मेंद्र प्रधान कर चुके। तो ऐसे में 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं उनको एक बड़े राज्य की जो है वो जिम्मेदारी जो है वो मिल सकती है चुनाव प्रभारी के तौर पर।
0: सो क्लियरली गिवन हिज एक्सपीरियंस परहैप्स द बीजेपी लीडरशिप हैज समथिंग मोर इन प्लान, बट फॉर नाउ टेलिंग जयराम रमेश, व्हेन जयराम रमेश सेड इट हैपेंस एंड ट्राई टू एक्सप्रेस सिंपथी विद हिम, इन टर्न फ्रॉम आवर सोर्सेज वी आर बीइंग टोल्ड दैट धर्मेंद्र प्रधान सेड नथिंग्स रियली हैपेंड, आई एम अ स्ट्रीट फाइटर नॉट एन एसी रूम एक्टिविस्ट, बट for a senior leader like him who's clearly been in some way faced the pressure to resign amid the massive protests, what next for former education minister Dharmendra Pradhan? Let's take a look at this report coming in from Piyush Mishra.
2: Well, the India Bloc MPs are right now protesting right in front of Makar Dwar on the issue of alleged attack on students. You can see as to how Priyanka Gandhi is leading this entire charge. Rahul Gandhi has just joined this entire protest, and this sloganing is basically against Home Minister Amit Shah, and now they are seeking answers from the government over the injuries on students who were protesting on July 20. You can see as to how the protesters here are now raising their demand, and now they are saying they are not only raising the issue of the attack on students but also Chanda Chori, the kind of attack on democracy which happened. This is all these things are being raised by the opposition. So here we can see as to how the opposition MPs are now staging a sit-in protest. They have now decided to sit in right in front of Makar Dwar, and Rahul Gandhi is coordinating with all these protests. Those are now happening, so you can clearly see as to how today once again the situation is not good, is not conducive for having debates, as opposition continues to raise the demand of government's answers on the issue of alleged brutal attack on the students who were marching towards the parliament on July 20. Piyush Mishra, Delhi, for Nehru Day.
3: Sir, Vipaksh abhi bhi house nahi chalne de raha hai, maine istifa ki aapki mang kar raha tha, kuch kehna hai us pe sir ki हाउस में बिल आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे सर?
4: इसके बावजूद जो है हाउस रन अपोजिशन नहीं होने दे रहा है
3: सर, क्या सर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स
4: है वो छात्रों के हित में है सर, कि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं
3: सर, हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर आप?
0: Right, so that's what's happening. Our colleagues continue to get us what's unfolding from the parliament. But 5 p.m., stay tuned. If some headway is made, could the discussions resume? From politics, I want to now take you to business news. Let's go across to what's happening from the business sector. My colleague Sakshi Batra to give you all the latest.
5: Look, this investment guru tips will double your money. Just claim the offer.
6: Double your money from any random group. Pay attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight.
7: Well said.
6: SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
8: Presented by National Stock Exchange.

0: मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए।
1: किसी को बात करनी है तो बिल्कुल वो बात करे, लेकिन अगर बात करके आप ब्लैकमेल करना चाहें, धमकी देना चाहें, तो मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बात करिए। और देखिए, गठबंधन जो होते हैं ये राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उचित समय पर फैसला करेगा। तो जब उचित समय पर फैसला होगा तो जो लोग भी हमारे विचारधारा के साथ हैं, हमारी उनसे विचारधारा मेल खाती है, वो लोग अगर आते हैं तो मुझे लग रहा है कि जरूर बात होनी चाहिए। और जब बात होगी तो कोई रास्ता निकलेगा।

0: रात को या आज सुबह बिहार में बंगाल में, तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। बैलेट गन्स, AK-47, आर दिस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस?
1: आप लोगों ने आवाज उठाई।
2: इट्स रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम दैट द एलओपी हैज शोन ग्रेट डील ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटी टुडे व्हाइल ही ट्वीटेड एंड ही स्पोक अबाउट पुलिस यूजिंग AK-47 ऑन द स्टूडेंट प्रोटेस्ट। इट इज एब्सोल्यूटली कंडेमनेबल दैट सच काइंड ऑफ फॉल्सिटी बी स्प्रेड बाय अ पर्सन who occupies the post of LOP, Leader of Opposition in India. Naturally, solving is not the purpose of Mr. Rahul Gandhi. Trying to create furore, trying to create manufactured anger, trying to manufacture a protest, and above all, trying to create anarchy. Does the police in this country use AK-47 to fire on protester ever? How can Mr. Rahul Gandhi say that AK-47 has been used? This is totally unacceptable.
3: आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए सरकार ने जो तरीके अपनाए वो निंदनीय हैं। इस देश का विद्यार्थी, इस देश की जनता सवाल कर रहा है कि आपने उन पे आंसू गैस के गोले क्यों दागे, आपने उन पे वाटर कैनन क्यों चलाया, आपने उन पे लाठीचार्ज क्यों किया, और सबसे बड़ा सवाल कि आपने AK-47 पायलट गन का उपयोग क्यों किया, जो कि एक तरीके से बैन है हिंदुस्तान के अंदर। जब तक देश की सुरक्षा खतरे में ना हो या बॉर्डर सरहद की कोई लड़ाई या युद्ध ना हो, तब तक आप उनका जो है उपयोग नहीं कर सकते हो, और आपने उनका उपयोग जो है इस देश के विद्यार्थियों पे किया है। तो ये बड़ा सवाल इस देश का विद्यार्थी जो है पूछ रहा है, और ये जांच का विषय है कि किसके कहने पे, किसके आदेश पे जो है आपने ये गन फायर का आदेश दिया है।
4: From Bihar, let me bring you back to national capital Delhi, where that is where all the action was. And at Jantar Mantar, remember the one report that clearly went viral and has shocked everyone. That's the use of pellet guns on protesters. And pellet guns, not on one or two, but multiple instances, got confirmed even by India Today. Now, what those reports have showed is now the CRPF is going to review the guidelines or the charges that have come against the use of pellet guns, reviewing RAF action. Basically, it's the Rapid Action Force that does use the pellet gun with the CRPF as and when required. But it's usually in very stringent situations, like, let's say, counter-insurgency operation or violent agitations like we have seen in the Kashmir rally. Information has emerged that RAF personnel fired pellet rounds on the protesters. This was in Connaught Place area, in which also, let me tell you, that more than 47 RAF personnel also received serious grievous injuries from the stone pelting, from the violence from protesters in the same area. And that is where the tear gas were used. Pellets were also used from the forces. Speaking to India Today, the protester alleging that police initially fired tear gas and shots in the air before later firing toward the crowd. Rahul Gandhi has jumped on this. He's picked this issue. Rahul Gandhi is addressing the media and with a pellet gun victim standing by his side, charging at Home Minister Amit Shah.
5: आपने उसे पहली बार कितने दिन बाद देखा जब चोट लगी थी? सेम डे आए थे या बाद में आए थे?
6: सेम डे आए थे। फोन आया था किसी का हमारे पास कि साले को घायल हो चुका है, मैम ऐसी सी बात है तो आप आ जाओ। हम फिर वहाँ पहुंचे तो देख के सारे में नाप ब्लड लग रही है, नाप लग रही है।
5: कटा हुआ था शरीर? क्या
6: शरीर? शरीर पे नहीं, आप तो पूरे मुंह पे, आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए हम तो भाई क्या क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज, जब उन्होंने कहा कि आंख में लड़के आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा।
5: ये बोल रहे हैं आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा?
6: हाँ, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बोले यहाँ तो नहीं होगा, कहीं और ले जाओ, ले जाओ। तो हम लेके लेकर पूरी रात भर हम भटकते रहे, कभी यहाँ मगर प्राइवेट में भी ले चले, मगर देखे जाके पैसे वैसे की तो प्राइवेट में भी लेके, प्राइवेट में सारे तो बंद थे। बोले अभी आँख का डॉक्टर नहीं आएगा, सुबह आएगा। मगर इससे बड़े ऑफिसर जो वो कह रहे हैं सरकारी में, जो ये जो यहाँ ले चलो।
7: What is most important now is accountability from the Home Ministry. You cannot have in the largest democracy in the world children, our children, innocent, vulnerable, peaceful protesters being dragged on the street, projectile action guns, pellet guns, and electric weapons being used on the children, and no accountability.
8: आप बोल रहे हो कि pellet gun लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं pellet gun कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना।

ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से

0: इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है।
1: Meanwhile, this has seen a direct involvement from Prime Minister Narendra Modi with his responses to the student fraternity. Third message, a video message again, has come from Prime Minister Modi in the past few hours, and that is now about what next. So it's an update, literally, from Prime Minister Modi directly after reaching out to the young friends. Then the kind of acknowledgement that the protest has concluded. Now Prime Minister Modi is talking about the reforms. The Prime Minister adding that strict action is being taken against those involved in exam irregularities. Fast-track courts already set up. Anti-paper leak bill is set to be introduced. Adding to that, about a high-powered task force on examination reforms have been set up. And that is a major step toward making India's examination system more transparent, credible and technology-driven. So who's leading this task force? Infosys co-founder and technology expert Nandan Nilekani, recommending long-term reforms aimed at strengthening credibility of future exams. Nilekani, for those who may not remember, is best known as architect of India's Aadhaar biometric ID system, a key force behind India's stack, which powers digital services like UPI, eKYC, DigiLocker, and more. But the Congress has dismissed the move. They are saying this is just a compromised image of Prime Minister Modi. Congress is questioning why the earlier reform recommendations after 2024 NET leak remain unimplemented, and that there's a complete absence of a full-time NTA Director General between the 2 years of 24-26.
2: फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: So let's listen in to this video message of Prime Minister Modi. Three messages already have come, requesting the students to end the protest, assuring that all will be done, then congratulating them and acknowledging that there was this ending of the protest that was done and how the government's assurances have worked. Now third, an update on what is happening with the reforms.
3: Friends, main janta hoon ki पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा

0: pretty similar to what we saw in Lok Sabha just minutes ago.
1: Bill.
0: Again, the Parliamentary Affairs Minister again trying to make an appeal to the opposition, but the opposition has made up its mind. It seems they want a statement from Home Minister Rahul Gandhi, in fact, going to speak to ask for an apology as well. But let's listen to what the Parliamentary Affairs Minister is saying.
1: यहाँ भी जैसा ओपोजिशन पार्टी चाहते थे आज बिजनेस एडवाइजरी में टाइम अलॉट हो गया टाइम अलॉटमेंट होने के बाद वो बिल लोकसभा से पारित करके राज्यसभा आएंगे सबको मालूम है आज जो ऑलरेडी यहाँ बिल इंट्रोड्यूस्ड है उस पर डिस्कशन के लिए टाइम दिया गया है और ऑलरेडी मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं चर्चा सुनने के लिए अब ये बाहर में कांग्रेस वाला बताते हैं के पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए बोलते नहीं है ये कौन सा तरीका है आपको बोलने के लिए हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है और आप हाउस चलने नहीं देते हैं मैं खड़गे जी आपसे फिर से विनती करता हूँ इतना सीनियर लीडर है आपका ये कांग्रेस का एमपी और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं समझाइए ऐसा मत कीजिए देश के युवा देख रहे हैं ये बिल पे चर्चा सब सुनना चाहते हैं हमारा लोकसभा में भी ऑलरेडी हम लोगों ने सूची भी दे दिया है कौन कौन बोलेंगे वहां भी आपका कांग्रेस वाला उत्पात बचा रहे हैं ठीक नहीं है और मैं फिर से अनुरोध करता हूँ आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मुकदमा पड़ेगा अभी युवा लोग को हमने आश्वासन दिया कि हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया और आप यहाँ चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है ये ठीक बात नहीं मैं इसका खंडन करता हूँ
2: प्रमोद जी चर्चा पर बोलिए चर्चा पर बोलिए
1: हाँ मैं वही कह रहा हूँ
2: जी जी जी चलो चलो तैयार है लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए
3: यही बात
2: और उन्होंने जो लाठी बच्चों को जो पारा 2026
0: All right, the same template that we saw in Lok Sabha being followed in Rajya Sabha as well. Kiran Rijiju making the same statements over there, urging the opposition to let the house function so they can table the bill. In fact, they've managed to table the bill. They want the discussion to start now. But Kharge there from Congress has said very, very clearly that it'll start only after the Home Minister comes out, makes a statement as well. All right, let's go back to our reporters over there. Moshmi, Aishwarya, Himanshu, all three continue to be with us. Himanshu, क्या आप कह रहे हैं आपकी खबर के हिसाब से कि कल पार्लियामेंट चलेगा लेकिन अभी तो कांग्रेस पार्टी बहुत एडमेंट हो रही है इस बात पर खड़गे जी ने खुद ही फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल दिया है कि होम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना है उसी के बाद पार्लियामेंट फंक्शन होगी तो क्या ये जो ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मीटिंग हुई है उसमें कांग्रेस वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट कि कांग्रेस था और क्या होम मिनिस्टर कल स्टेटमेंट देंगे कि नहीं इस पर कुछ क्लैरिटी है क्या
4: पहले भी कहा कि स्पीकर के साथ जो है केसी वेणुगोपाल अखिलेश यादव समेत तमाम अलग अलग विपक्षी दलों के जो नेता हैं उन्होंने मुलाकात की है और एक आम सहमति बन गई है कि लोकसभा में जो है कल इस बिल पर चर्चा होगी 12 बजे जब पेपर लेक हो जाएगा टेबल पे उसके बाद से चर्चा शुरू हो जाएगी और विपक्ष इसके लिए तैयार हो गया है विपक्ष की ये मांग जरूर थी कि गृह मंत्री जो है वो स्टेटमेंट दे दें लेकिन इस बिल को जिस तरीके से सरकार लेकर आई है स्पीकर ने ये समझाया संसदीय कार्य मंत्री के साथ क्योंकि बैक चैनल बातचीत भी बहुत जरूरी होती है संसद की अगर आप प्रोसीजिंग और कार्यप्रणाली देखें तो बैक चैनल बातचीत के तहत ये सहमति बन गई है कि कल इस बिल पर चर्चा होगी और इसी बिल के अंदर जो भी चीजें विपक्ष को मांग करनी है वो इसी बिल की चर्चा के दौरान अपनी मांग रख कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है अपने पक्ष को रख सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस जो नीट पेपर लीक मामला है इसको लेकर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर और संसद

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: Welcome back. Let's turn to tonight's ground report, and it comes from Assam, where floodwaters are gradually receding, but it's exposing a trail of destruction that's left behind by the waters. Thousands of families dealing with damaged homes, lost livestock, destroyed livelihoods. As relief operations continue, the bigger challenge for lakhs of affected residents in Upper Assam is rebuilding the lives washed away by the floodwaters. Take a look.
4: The floodwaters may be receding in parts of Assam. But for thousands, the nightmare is far from over. Nowhere is that more evident than Nepali Khuti village in Nazira, near the Nagaland border, where entire villages were swallowed by floodwaters.
5: So, itna flood hai, aadmi log jo ghar mein hai rehte hain, उनको भी मतलब ये गले तक पानी है किसी कैसे कहते छत का ऊपर से जा रहे
6: কিন্তু কমমাইতে পানী হল পানীত আমি ইমান অসুবিধা হৈছে ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাই
7: আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ ইয়াত আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াত সাহাৰ্য যি পৰিমাণে পাব লাগে পোৱা নাই চৰকাৰী সাহাৰ্য ইয়াত পোৱাই নাই বুলিছে ইয়াত যুৱসংঘৰ যুৱকসকলে আহি ইয়াত যোগাৰ ধৰিছে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা পানীৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে এই পানীখিনিত মানে বাচন বৰ্তন ধুব লগা হৈছে
8: পিপল আৰ চেয়িং ডেট দে আৰ নট গেটিং দ্য ৰিলিফ প্ৰপাৰলি ৰিলিফ আইটেমছ প্ৰপাৰলি হিয়াৰ এণ্ড দে আৰ ৰিকুৱেষ্টিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু give them assistance, to give them relief. There are old people also, there are youth also, and they are staying. You can see how they are staying at the roadside.
4: For families here, the loss goes far beyond their homes. In Jorhat's Alangmora area too, water levels have fallen. Exposing the scale of devastation. Many homes remain partially submerged and residents continue to depend on relief supplies for food and other essentials. According to the State Disaster Management Authority, as many as 6.54 lakh people remain affected across six cities. 66 people have lost their lives in this year's floods, while 810 villages remain inundated and nearly 35,000 hectares of cropland have been damaged.
9: Slow.
4: Even as floodwaters gradually recede in parts of Upper Assam, relief operations continue.
10: So, this time, the bandh ka jo paristhiti hai, bahut hi bhayanak ek paristhiti hai, sthiti hai. Logon ka khane ke liye taras rahe hai log. तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके लोगों के साथ हम खुद भी और जो एनजीओ लोग आ रहा है समाज के जो मदद करने के लिए लोगों को बसाने के लिए जो लोग आ रहे हैं कुछ खाने को लिए दे रहे हैं ये सब जुटा के हम लोग लोगों के पास में आ रहे हैं सबको मदद कर रहे हैं जितना हो सके हम मदद कर रहे
4: But for survivors across Upper Assam, the immediate challenge is no longer escaping the floods. It is rebuilding lives that the waters have swept away. With Priyanka Saharia and Rana Gogoi in Sipsagar, Assam, Bureau Report, India Today.
3: And our thoughts and prayers with the people of Assam and Gujarat, the two worst affected flood states at the moment. Okay, let's turn to some happy news. And the happy news comes from the one and only Mirabai Chanu, the remarkable weightlifter who won a third consecutive Commonwealth gold and the first at this year's 2026 edition. In this exclusive interview with my colleague Nikhil Naz, the weightlifter from Manipur spoke about what it takes to win a hat-trick of golds at the CWG. Listen in.
9: Okay, talking to us is the golden girl of Indian sports, Mirabai Chanu, because not one, three gold medals in a row at the Commonwealth Games. Mira, sabse pehli cheez to jo mere dimag mein aati wo ye ki theek hai gold medal hai, par aapne shuruaat ki Commonwealth Games se 14 se 12 saal ho gaye hain aur fir bhi aap aise sports mein jisme टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है, कुछ ही साल तक रह सकते हो, इंजरीज भी बहुत आते, इतने साल तक आप टॉप पे रही, क्या सीक्रेट है?
11: मेरा सीक्रेट क्या बोल सकते हैं, ये मेरा वेट मेंटेन करके रखने का सीक्रेट बस यही था कि मैं स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करती हूँ, जो मुझे करना चाहते हैं जब तक नहीं मिलती मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखती हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करके मतलब कुछ करूँ और इंडिया के नाम को हर टाइम ऊपर करने के लिए सोचूं।
9: आप कह रहे हो एक सीक्रेट तो ये है, वेट मेंटेन करते हो आप, पर जिसको पिज्जा पसंद है वो वेट कैसे मेंटेन करता है? क्या वो जर्सी पहन के आपको याद आता है कि नहीं नहीं खाऊंगी पिज्जा?
11: बिल्कुल बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जब हम पिज्जा को ऐसा खाने के लिए हम एक वाइट निकालेंगे तो सब सोचते हैं कि मेरा कल ट्रेनिंग है, उसी टाइम मेरा कॉम्पिटिशन है तो मैं नहीं खा सकती। मैं मेडल या कॉम्पिटिशन होने की बात ही इसके साथ में एंजॉय कर सकती हूँ। जब तक मेरा पास स्पोर्ट्स में हूँ मैं, तो मैं उस सबको अवॉइड करती हूँ कि मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है।
3: And you can catch that full interview on Sports Today. Okay, just about enough time to leave you with our images of the day, the images of the NEET protest crackdown. Okay, let me leave you on that note with all that we've just packed about enough on the show. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.

0: floodwaters.
1: So इतना फ्लड है आदमी लोग जो घर में है रहते हैं उनको भी मतलब ये गलत एक पानी है किसी कैसे कहते छत का ऊपर से जा रहे
2: हैं पानी तो इन असुविधा भर सुमा ना
3: और इते देखी इतना गम पाई सहाज्य जीपरण पा लगे पा ना सरकारी सहाज्य इतना पा ना बोलिसे इतना युव संघर युवक इतना जोगार धरीसे और इते एने पानी कारण असुविधा पानीखित मैं बसन बर्तन धुबलगा
4: पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट गेटिंग द रिलीफ properly relief items properly here and they are requesting the government to give them assistance to give them relief there are old people also there are youth also and they are staying you can see how they are staying at the roadside
5: for families here the loss goes far beyond their homes in Jorhat's Alangmora area too water levels have fallen exposing the scale of devastation many homes remain partially submerged and residents continue to depend on relief supplies for food and other essentials according to the state disaster management authority as many as 6.54 lakh people remain affected across 6 cities 66 people have lost their lives in this year's floods while 810 villages remain inundated and nearly 35,000 hectares of cropland have been damaged even as flood waters gradually recede in parts of upper Assam relief operations continue
6: to is bar jo ban ka jo paristhiti hai bahut hi bhayanak ek paristhiti hai sthiti hai logo ka khane ke liye taras rahe log तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके लोगों के साथ हम खुद भी और जो एनजीओ लोग आ रहा है समाज के जो मदद करने के लिए लोगों को बसाने के लिए जो लोग आ रहा है कुछ खाने को लिए दे रहे हैं ये सब जुटा के हम लोग लोगों के पास में आ रहे हैं सबको मदद कर रहे हैं जितना हो सके हम मदद कर रहे
5: बट फॉर सर्वाइवर्स अक्रॉस अपर असम द इमीडिएट चैलेंज इज नो लॉन्गर एस्केपिंग द फ्लड्स इट इज रीबिल्डिंग लाइव्स दैट द वाटर्स हैव स्वेप्ट अवे With Priyanka Saharia and Rana Gogoi in Sip Sagar, Assam, Bureau Report, India Today.
4: Mirabai Chanu made India proud when she won the nation's first gold medal of the 2026 edition of the Commonwealth Games. In this exclusive interview with my colleague Nikhil Nals, the weightlifter from Manipur speaks about her journey to winning a hat-trick of gold medals in the CWG, how she stays motivated and the challenges she faced to win this medal. Listen in.
7: Okay, talking to us is the golden girl of Indian sports, Mirabai Chanu, because not one, three gold medals in a row at the Commonwealth Games. Meera, सबसे पहली चीज तो जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि ठीक है गोल्ड मेडल है पर आपने शुरुआत की कॉमनवेल्थ गेम्स से 14 से 12 साल हो गए हैं और फिर भी आप ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है कुछ ही साल तक रह सकते हो इंजरीज भी बहुत आते इतने साल तक आप टॉप पे रही क्या सीक्रेट है
8: मेरा सीक्रेट क्या बोल सकते हैं ये मेरा वेट मेंटेन करके रखने का सीक्रेट बस यही था कि मैं स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करती हूँ जो मुझे करना चाहते हैं जब तक नहीं मिलती मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखती हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करके मतलब कुछ करूँ और इंडिया के नाम को हर टाइम ऊपर करने के लिए सोचूं
7: आप कह रहे हो एक सीक्रेट तो ये है वेट मेंटेन करते हो आप पर जिसको पिज्जा पसंद है वो वेट कैसे मेंटेन करता है क्या वो जर्सी पहन के आपको याद आता है कि नहीं नहीं खाऊंगी पिज्जा
8: बिल्कुल बिल्कुल आता है बिल्कुल आता है जब हम पिज्जा को ऐसा खाने के लिए हम एक बाइट निकालेंगे तो सब सोचते हैं कि मेरा कल ट्रेनिंग है उसी टाइम मेरा कॉम्पिटिशन है तो मैं नहीं खा सकती मैं मेडल या कॉम्पिटिशन होने की बात ही इसके साथ में एंजॉय कर सकती हूँ जब तक मेरे पास स्पोर्ट्स में हूँ मैं तो मैं इन सबको अवॉइड करती हूँ कि मेरा एम क्या है मुझे क्या बनना है
7: अभी तो आप भी हंस रहे हो मैं भी हंस रहा हूँ लेकिन मीरा को मैंने जब जैसे देखा जीत के आई

0: बात करने लगी मीडिया से तो आपके आंसू आ गए, मेडल पोडियम पे आप खड़े हुए, आपके आंसू आ गए। क्या था उसके पीछे, वो इमोशंस के पीछे क्या था वो रीजन कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए?
1: बहुत कुछ था उसी टाइम में, बहुत कुछ चल रहे थे। बहुत याद आया जब मैं पोडियम में खड़े थे, तब जब हमने क्या क्या स्ट्रगल करके, हमने क्या क्या फेस करके, फाइट करके यहाँ तक पहुंचे थे कि लगातार गोल देना और कंपटीशन खेलना और वो सब, और एक प्लेयर्स इंजुरी से वापस आके ये सब मेडल हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात होते हैं। तो इसलिए वही सोच रहे थे कि जब पौधे में खड़ी थी मैं, तो हमारी देश का तिरंगा ऊपर जा रहे थे और हमारे नेशनल एंथम जब बज रहे थे, तो मैं रुक नहीं पा रहा था खुद को, कि खुशी का ही आंसू था वो।
0: मेरा सवाल है एशियन गेम से जुड़ा। सबको पता है वहां टफ कंपटीशन है। दो जो मेडलिस्ट थे पैरिस में वो एशियन कंट्री से आते हैं, एक थाईलैंड से थी, एक
1: नॉर्थ
0: चाइना से थी।
1: कोरिया, चाइना।
0: आपका जो बेस्ट था, मैं देखा था ओलंपिक में 199 आपने टोटल वेट उठाया था, यहां पर 190। आपको पूरी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर क्या आप तैयार है 199-200 को टच करने के लिए एशियन गेम्स के लिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। मैं अभी भी ट्रेनिंग में ही एशियन गेम्स के ही फोकस कर रही हूँ पहले से ही। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबको पता है ये इजी ही है, पर हमने सोचा था कि इधर से हमको क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस जो है वो देखना था। पर हम एशियन गेम्स में ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सब है मेरे पास, तो एशियन गेम्स का मेडल नहीं है मेरे पास, तो मैं सोचूंगी कि इस बार पूरा मैं कोशिश करूंगी कि एशियन गेम्स में एक मेडल इंडिया के लिए फिर से मैं देने के लिए, तो पूरा फोकस है मेरे एशियन गेम्स की।
2: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching. For more news and updates, you can log into indiatoday.in or check out the India Today app.
3: You are watching India Today.
4: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.

0: Welcome back. Let's turn to tonight's ground report, and it comes from Assam, where flood waters are gradually receding, but it's exposing a trail of destruction that's left behind by the waters. Thousands of families dealing with damaged homes, lost livestock, destroyed livelihoods. As relief operations continue, the bigger challenge for lakhs of affected residents in Upper Assam is rebuilding the lives washed away by the flood waters. Take a look.
1: The flood waters may be receding in parts of Assam, but for thousands, the nightmare is far from over. Nowhere is that more evident than Nepali Khuti village in Nazira, near the Nagaland border, where entire villages were swallowed by flood waters.
2: So, itna flood hai. Aadmi log jo ghar mein rehte hain. उनको भी मतलब ये गले तक पानी है किसी कैसे कहते छत का ऊपर से जा रहे
3: हैं कम हम पानी हम पानी तो अभी इन असुविधा भीतर सोमा ना
4: और इतने देखी इतनी गम पाई सहाज्य जीमाणे पा लगे पा ना सरकार सहाज्य इतना पा ना बोलिसे इतना युव संघर युवक इतना जोगार धरीसे और इते एने पानी कारण असुविधा पानीखिन मानने बसन बर्तन धुबलगा
5: पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट गेटिंग द रिलीफ्स प्रॉपरली रिलीफ आइटम्स प्रॉपरली हियर एंड दे आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू गिव देम असिस्टेंस टू गिव देम रिलीफ देर आर ओल्ड पीपल ऑल्सो देर आर यूथ ऑल्सो and they are staying you can see how they are staying at the roadside
1: for families here the loss goes far beyond their homes in Jorhat's Alingmora area too water levels have fallen exposing the scale of devastation Many homes remain partially submerged and residents continue to depend on relief supplies for food and other essentials. According to the State Disaster Management Authority, as many as 6.54 lakh people remain affected across six cities. 66 people have lost their lives in this year's floods, while 810 villages remain inundated. And nearly 35,000 hectares of cropland have been damaged.
6: Slow.
1: Even as floodwaters gradually recede in parts of Upper Assam, relief operations continue.
7: So, इस बार जो बाढ़ का जो परिस्थिति है, बहुत ही भयानक एक परिस्थिति है, स्थिति है. लोगों का खाने के लिए तरस रहे लोग. तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके, लोगों के साथ हम खुद भी और जो NGO लोग आ रहा है समाज के जो मदद करने के लिए लोगों को. बसाने के लिए जो लोग आ रहे हैं कुछ खाने को लिए दे रहे हैं ये सब जुटा के हम लोग लोगों के पास में आ रहे हैं सबको मदद कर रहे हैं जितना हो सके हम मदद कर रहे
1: But for survivors across Upper Assam, the immediate challenge is no longer escaping the floods. It is rebuilding lives that the waters have swept away. With Priyanka Saharia and Rana Gogoi in Sipsagar, Assam, Bureau Report, India Today.
0: And our thoughts and prayers with the people of Assam and Gujarat, the two worst affected flood states at the moment. Okay, let's turn to some happy news. And the happy news comes from the one and only Mirabai Chanu, the remarkable weightlifter who won a third consecutive Commonwealth gold and the first at this year's 2026 edition. In this exclusive interview with my colleague Nikhil Naz, the weightlifter from Manipur spoke about what it takes to win a hat-trick of golds at the CWG. Listen in.
8: Okay, talking to us is the golden girl of Indian sports, Mirabai Chanu, because not one, three gold medals in a row at the Commonwealth Games. Mira, sabse pehli cheez to jo mere dimag mein aati hai wo ye ki theek hai gold medal hai par aapne shuruaat ki Commonwealth Games se 14 se 12 saal ho gaye hain aur fir bhi aap aise sports mein jisme टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है कुछ ही साल तक रह सकते हो इंजरीज भी बहुत आते इतने साल तक आप टॉप पे रही क्या सीक्रेट है
6: मेरा सीक्रेट क्या बोल सकते हैं, ये मेरा वेट मेंटेन करके रखने का सीक्रेट बस यही था कि मैं स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करती हूँ। जो मुझे करना चाहते हैं जब तक नहीं मिलती, मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखती हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करके मतलब कुछ करूँ और इंडिया के नाम को हर टाइम ऊपर करने के लिए सोचूं।
8: आप कह रहे हो एक सीक्रेट तो ये है, वेट मेंटेन करते हो आप, पर जिसको पिज्जा पसंद है वो वेट कैसे मेंटेन करता है? क्या वो जर्सी पहन के आपको याद आता है कि नहीं नहीं खाऊंगी पिज्जा?
6: बिल्कुल बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जब हम पिज्जा को ऐसा खाने के लिए हम एक बाइट निकालेंगे तो सब सोचते हैं कि मेरा कल ट्रेनिंग है, उसी टाइम मेरा कंपटीशन है, तो मैं नहीं खा सकती। मैं मेडल या कंपटीशन होने की बात ही इसके साथ मैं एंजॉय कर सकती हूँ। जब तक मेरे पास स्पोर्ट्स में हूँ मैं, तो मैं इन सबको अवॉइड करती हूँ कि मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है।
0: And you can catch that full interview on Sports Today. Okay, let me leave you on that note with all that we've just packed about enough on the show. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri. Jai Hind. Namaskar.

0: Welcome back. Let's turn to tonight's ground report, and it comes from Assam, where floodwaters are gradually receding, but it's exposing a trail of destruction that's left behind by the waters. Thousands of families dealing with damaged homes, lost livestock, destroyed livelihoods. As relief operations continue, the bigger challenge for lakhs of affected residents in Upper Assam is rebuilding the lives washed away by the floodwaters. Take a look.
1: The floodwaters may be receding in parts of Assam, but for thousands, the nightmare is far from over. Nowhere is that more evident than Nepali Khuti village in Nazira, near the Nagaland border, where entire villages were swallowed by floodwaters.
2: So, itna flood hai, Aadmi log jo ghar mein hai rehte hain. उनको भी मतलब ये गले तक पानी है किसी कैसे कहते छत का ऊपर से जा रहे
3: কিন্তু কমাইতে পানী হল পানীত আমি ইমান অসুবিধা হৈছে ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাই
4: আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ ইয়াত আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াত সাহায্য যি পৰিমাণে পাব লাগে পোৱা নাই চৰকাৰী সাহায্য ইয়াত পোৱাই নাই বুলিছে ইয়াত যুৱসংঘৰ যুৱকসকলে আহি ইয়াত যোগাৰ ধৰিছে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা পানীৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে এই পানীখিনিত মানে বাচন বৰ্তন ধুব লগা হৈছে
5: পিপল আৰ চেয়িং ডেট দে আৰ নট গেটিং দ্য ৰিলিফছ প্ৰপাৰলি ৰিলিফ আইটেমছ প্ৰপাৰলি হিয়াৰ এণ্ড দে আৰ ৰিকুৱেষ্টিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু গিভ them assistance to give them relief there are old people also there are youth also and they are staying you can see how they are staying at the roadside
1: for families here the loss goes far beyond their homes in Jorhat's Alangmora area too water levels have fallen exposing the scale of devastation. Many homes remain partially submerged and residents continue to depend on relief supplies for food and other essentials. According to the State Disaster Management Authority, as many as 6.54 lakh people remain affected across six cities. 66 people have lost their lives in this year's floods, while 810 villages remain inundated and nearly 35,000 hectares of cropland have been damaged.
6: Slow.
1: Even as floodwaters gradually recede in parts of Upper Assam, relief operations continue.
7: So, this time, the banka is a very dangerous situation. People are hungry for food. तो इसीलिए हम लोग जितना हो सके लोगों के साथ हम खुद भी और जो एनजीओ लोग आ रहा है समाज के जो मदद करने के लिए लोगों को बसाने के लिए जो लोग आ रहा है कुछ खाने को लिए दे रहे हैं ये सब जुटा के हम लोग लोगों के पास में आ रहे हैं सबको मदद कर रहे हैं जितना हो सके हम मदद कर रहे
1: But for survivors across Upper Assam, the immediate challenge is no longer escaping the floods. It is rebuilding lives that the waters have swept away. With Priyanka Saharia and Rana Gogoi in Sipsagar, Assam, Bureau Report, India Today.
0: And our thoughts and prayers with the people of Assam and Gujarat, the two worst affected flood states at the moment. Okay, let's turn to some happy news. And the happy news comes from the one and only Mirabai Chanu, the remarkable weightlifter who won a third consecutive Commonwealth gold and the first at this year's 2026 edition. In this exclusive interview with my colleague Nikhil Naz, the weightlifter from Manipur spoke about what it takes to win a hat-trick of golds at the CWG. Listen in.
8: Okay, talking to us is the golden girl of Indian sports, Mirabai Chanu, because not one, three gold medals in a row at the Commonwealth Games. Mira, sabse pehli cheez to jo mere dimag mein aati wo ye ki theek hai gold medal hai पर आपने शुरुआत की कॉमनवेल्थ गेम्स से 14 से 12 साल हो गए हैं और फिर भी आप ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है कुछ ही साल तक रह सकते हो इंजरीज भी बहुत आते हैं इतने साल तक आप टॉप पे रही क्या सीक्रेट है
6: मेरा सीक्रेट क्या बोल सकते हैं, ये मेरा वेट मेंटेन करके रखने का सीक्रेट बस यही था कि मैं स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करती हूँ। जो मुझे करना चाहते हैं जब तक नहीं मिलती, मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखती हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करके मतलब कुछ करूँ और इंडिया के नाम को हर टाइम ऊपर करने के लिए सोचूँ।
8: आप कह रहे हो एक सीक्रेट तो ये है, वेट मेंटेन करते हो आप, पर जिसको पिज्जा पसंद है वो वेट कैसे मेंटेन करता है? क्या वो जर्सी पहन के आपको याद आता है कि नहीं नहीं खाऊंगी पिज्जा?
6: बिल्कुल बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जब हम पिज्जा को ऐसा खाने के लिए हम एक बाइट निकालेंगे तो सब सोचते हैं कि मेरा कल ट्रेनिंग है, उसी टाइम में मेरा कंपटीशन है, तो मैं नहीं खा सकती। मैं मेडल या कंपटीशन होने की बात ही इसके साथ में एंजॉय कर सकती हूँ। जब तक मेरे पास स्पोर्ट्स में हूँ मैं, तो मैं उस सबको अवॉइड करती हूँ कि मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है।
0: And you can catch that full interview on Sports Today. Okay, let me leave you on that note with all that we've just packed about enough on the show. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.

0: Welcome back. Let's turn to tonight's ground report, and it comes from Assam, where flood waters are gradually receding, but it's exposing a trail of destruction that's left behind by the waters. Thousands of families dealing with damaged homes, lost livestock, destroyed livelihoods. As relief operations continue, the bigger challenge for lakhs of affected residents in Upper Assam is rebuilding the lives washed away by the flood waters. Take a look.
1: The flood waters may be receding in parts of Assam, but for thousands, the nightmare is far from over. Nowhere is that more evident than Nepali Khuti village in Nazira near the Nagaland border, where entire villages were swallowed by flood waters.
2: So itna flood hai, aadmi log jo ghar mein hai rehte hain, unko bhi matlab ye gale tak pani hai, kisi kaise kahe to chhat ka upar se ja rahe hain.
3: কিন্তু কমামাইতে পানী হল পানীত আমি ইমান অসুবিধা হৈছে, ভিতৰলৈ সোমাব পৰা নাই.
4: আৰু ইয়াতে দেখিছোঁ, ইয়াত আমি গম পাইছোঁ যে ইয়াত সাহায্য যি পৰিমাণে পাব লাগে পোৱা নাই, চৰকাৰী সাহায্য ইয়াত পোৱাই নাই বুলিছে. ইয়াত যুৱ সংঘৰ যুৱকসকলে আহি ইয়াত যোগাৰ ধৰিছে আৰু ইয়াতে এনেকুৱা পানীৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, তেওঁলোকে এই পানীখিনিত মানে বাচন বৰ্তন ধুব লগা হৈছে.
5: পিপল আৰ চেইং ডেট দে আৰ নট গেটিং দ্য ৰিলিফছ প্ৰপাৰলি, ৰিলিফ আইটেমছ প্ৰপাৰলি হিয়াৰ, এণ্ড দে আৰ ৰিকুৱেষ্টিং দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু give them assistance, to give them relief. There are old people also, there are youth also, and they are staying. You can see how they are staying at the roadside.
1: For families here, the loss goes far beyond their homes. In Jorhat's Alangmora area too, water levels have fallen, exposing the scale of devastation. Many homes remain partially submerged and residents continue to depend on relief supplies for food and other essentials. According to the State Disaster Management Authority, as many as 6.54 lakh people remain affected across six cities. 66 people have lost their lives in this year's floods, while 810 villages remain inundated and nearly 35,000 hectares of cropland have been damaged.
6: Slow.
1: Even as floodwaters gradually recede in parts of Upper Assam, relief operations continue.
7: So is bar jo ban ka jo paristhiti hai, bahut hi bhayanak ek paristhiti hai, sthiti hai, logo ka khane ke liye taras rahe log. তো ইসলিয়ে হামলোক জিতনা হো সকে লোককে সাথ হাম খুদ ভি অর জো এনজিও লোক আ রহা হ্যায় সমাজকে জো মদদ করনে কে লিয়ে লোককো বসানে কে লিয়ে জো লোক আ রহা হ্যায় কুছ খানে কো লিয়ে দে রহে হ্যায় এ সব জুতাকে হাম লোক লোককে পাস মে আ রহে হ্যায় সবকো মদদ কর রহে হ্যায় জিতনা হো সকে হাম মদদ কর রহে
1: হ্যায় বাট ফর সারভাইভালস অ্যাক্রস আপার আসাম দ্য ইমিডিয়েট চ্যালেঞ্জ ইজ নো লঙ্গার এসকেপিং দ্য ফ্লাডস ইট ইজ রিবিল্ডিং লাইভস দ্যাট দ্য ওয়াটারস হ্যাভ সোয়েপ্ট অ্যাওয়ে With Priyanka Saharia and Rana Gogoi in Sip Sagar, Assam, Bureau Report, India Today.
0: And our thoughts and prayers with the people of Assam and Gujarat, the two worst affected flood states at the moment. Okay, let's turn to some happy news. And the happy news comes from the one and only Mirabai Chanu, the remarkable weightlifter who won a third consecutive Commonwealth gold and the first at this year's 2026 edition. In this exclusive interview with my colleague Nikhil Naz, the weightlifter from Manipur spoke about what it takes to win a hat-trick of golds at the CWG. Listen in.
8: Okay, talking to us is the golden girl of Indian sports, Mirabai Chanu, because not one, three gold medals in a row at the Commonwealth Games. Mira, sabse pehli cheez to jo mere dimag mein aati wo ye ki theek hai, gold medal hai, पर आपने शुरुआत की कॉमनवेल्थ गेम्स से 14 से 12 साल हो गए हैं और फिर भी आप ऐसे स्पोर्ट्स में जिसमें टॉप पे रहना बहुत मुश्किल है, कुछ ही साल तक रह सकते हो, इंजरीज भी बहुत आते, इतने साल तक आप टॉप पे रही, क्या सीक्रेट है?
6: मेरा सीक्रेट क्या बोल सकते हैं, ये मेरा वेट मेंटेन करके रखने का सीक्रेट बस यही था कि मैं स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करती हूँ। जो मुझे करना चाहते हैं जब तक नहीं मिलती, मैं उसी को ही ज्यादा फोकस रखती हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करके मतलब कुछ करूँ और इंडिया के नाम को हर टाइम ऊपर करने के लिए सोचू।
8: आप कह रहे हो एक सीक्रेट तो ये है, वेट मेंटेन करते हो आप, पर जिसको पिज्जा पसंद है वो वेट कैसे मेंटेन करता है? क्या वो जर्सी
6: बिल्कुल
8: पहन के आपको याद आता है कि नहीं नहीं खाऊंगी पिज्जा?
6: बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जब हम पिज्जा को ऐसा खाने के लिए हम एक बाइट निकालेंगे तो सब सोचते हैं कि मेरा कल ट्रेनिंग है, उसी टाइम में मेरा कंपटीशन है, तो मैं नहीं खा सकती। मैं मेडल या कंपटीशन होने की बात ही इसके साथ में एंजॉय कर सकती हूँ। जब तक मेरे पास स्पोर्ट्स में हूँ मैं, तो मैं इन सबको अवॉइड करती हूँ कि मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है।
0: And you can catch that full interview on Sports Today. Okay, let me leave you on that note with all that we've just packed about enough on the show. Thanks very much for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.